मर्द गम ही गम है जो मेरी नज़मों के जंगलों के विषमत रस्तों पे खो गए। वो साल खुर्दा हसीन औरत भी गम का चेहरा बनी हुई है, जिसे मोहब्बत ने रोशनी की नवीद दी थी, वो जिसने वादों से अपनी मंजिल कशीद की थी। वो गांव की कच्ची पक्की राहें, मेरी माँ की नहीं बाहें भी गम ही गम थी, कि मेरा बचपन तो गम के लंबे सफर की गमगीन इब्तदा थी।

एजाज और हकीकत भी सारे गम है। मैं एक शायर, मैं एक साहिर, मैं आगही के अजाब में गुम सफर का अंजाम जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर खुशी का इमाम गम है तमाम।

Something got to do with it? I don't think so.

Salutations, bye.

कुछ एतराज और कुछ इख्तलाफ। आज इस मुश्किल में टाल के दिया है तो सुनो सुनो कि मैं एक झूठ हूं, एक मुंह बोलता एक मुंह था झूठ। मैं भी और तुम भी झूठ। ये गीतों ने वहां का शहूर जंगो अमन के पेचो था तेजस्व से दिलो दिमाग वीरो आलम।

Stella! Stella!

चाहे मेरा दिल ले ले, चाहे मेरी जान ले ले, आरजू हो जैसे।

0: प्यार है, होना क्या है,
1: कुछ ना कुछ होता ही रहता है,
0: पर याद रख तू जो चाहता है

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

0: सस्पेंस।
1: और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब खत्म होने लगती है, और सुबह की कसम जब नमूदार होती है,

0: कि जिस तरह देखा जा रहा था वो यही था कि किसी तरीके से इस्लामाबाद करनी पड़नी है, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखेंगे तो उनके 82 बनते थे तकरीबन मंडेट, दूसरी तरफ देखे तो उनके इससे भी कम बनते थे ब्लू ब्लॉक में। फिर जाहिर है फिर जो जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे बात की है, और इसके दरमियान में जो खड़ा था वो मुर्गा ने। अगर आप ये जो चार पार्टियां ले लें जिनकी रकेंग बनी है, इनके मंडेट अगर आप मिलाएं तो बनते हैं 82 मंडेट। और अगर आपने हुकूमत बनानी है तो आपको चाहिए 90। तो इधर ये हुआ कि इन्होंने इनहस लिस्ट से और जिस जमात से पार्टी से मेरे ताल्लुकात अलसैना चू, उनसे इन्होंने रब्ता किया है कि हम आपसे हेल्प चाहते हैं कि आप या तो फिर हमारे साथ गवर्नमेंट में आए या आप हमारे स्टूडियो बने। तो हमारी जमात ने और इनहस लिस्ट ने कहा है कि हम आपकी स्टूडियो पचिया बनना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते। और उसकी वजह ये है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठते हैं और अगर गवर्नमेंट कोई सख्तियां लाए जैसे कि गैर मुल्कियों के खिलाफ है या कोई और चीज करना चाहती हैं, तो हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट में इनके साथ बैठे हुए हैं, वो क्रिटिसाइज करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम स्टूडियो पचिया बनना चाहते हैं तो उससे ये फायदा है कि हम जो चीजें चाहते हैं वो मनवा भी सकते हैं और साथ में इनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। इधर स्टूडियो पचिया बनने के लिए अलसाना चू ने अपने 5 मंडेट की सपोर्ट दी है और इनहस लिस्ट ने अपनी 11 दी है, मतलब हमने 16 दिए हैं जिससे कि ये 98 मंडेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ली है गवर्नमेंट की। अगर आप देखें कि जो खोंगी ओनासो विंस्था का जो कोर्स पहले बना था, उसने कहा था कि मैं एक मिंत्रा छल की रखेंगे, वो इससे भी मतलब के जो चार जमाते इधर जिन्होंने बनाई है पार्टी, वो इससे भी कम की बनाना चाह रहा था मंडेट से, और उसके जो स्टूडियो पचिया थे वो बाकी सारे ब्लू ब्लॉक के थे, तो लेकिन उसके लिए ना की गई थी। तो अब जो हुआ है वो ये है कि 98 मंडेट के साथ इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई है। और जिस तरीके से आपने अभी कहा कि हमें कुछ मिला नहीं, हमने मिनिस्टर्स तो नहीं ली, लेकिन जो पार्टी का जो जो वकींग्स कौन रहे हैं, जो उसका जो प्रोग्राम बनाया गया है कि हम अगले 4 साल क्या करना चाहते हैं, उसमें हमने काफी अपनी चीजें बनवा ली हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम काफी सक्सेसफुल रहे हैं। जी राय साहब,
1: तो जो चीज़ें आपने मनवाई हैं, चूँकि आप हमेशा गैर मुल्कियों की बात करते हैं, आप हकूक की बात करते हैं और खुलकर अपना मौक़िफ़ अपनी पार्टी में देते हैं और आपकी पार्टी सुनती भी है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं, जो पीछे जो कमरे में जो चीज़ें तय हुई हैं, जो जो पार्टियों के साथ उनके जो है मुआहदे हुए हैं, और उसमें आप बताएं ये बस फ्री हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी, दांतों का इलाज फ्री हो जाएगा और भी पेंशनिस्ट को सहूलियात मिलेगी, ये खाली खबरों की हद तक बातें हैं या प्रैक्टिकली हैं?
0: देखें, ये जो आपने जो चीजें नेम की हैं, आपको भी याद होगा और मुझे पक्का पता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग ऑन बोर्ड भी है, कि जैसे कि ये आपने बात की है दांतों के बारे में कि ये फ्री हम देना चाहते हैं, जो हमारे शहरी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो छेड़ने के पास जा सके, ये तो एक ऐसा मतलब कि मैं से है जो मैंने हमेशा अपने साथ रखा है। रीजन का इलेक्शन हो, प्यूहोल का हो या फॉल्के सिंह का, मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह होना चाहिए। अब ये जो बसें जो फ्री हैं, ये भी एक नुक्ता है जो मैंने फॉल्के सिंह में उठाया था, क्योंकि मेरा रابطہ स्कॉटलैंड ग्लासगो से बहुत ज्यादा है। एक तो ये है कि मेरी बहन की शादी उधर हुई है, दूसरा ये है कि हमारे जो मेजोरिटी रिश्तेदार हैं वो सारे स्कॉटलैंड गए हुए हैं, और स्कॉटलैंड में ऐसे है कि ये उधर उन्होंने लॉ बनाई है कि जो 22 साल के बच्चे होते हैं उनको, बल्कि 25 साल तक उनको इजाजत है फ्री बस में बैठने की। तो ये भी एक चीज है जिसके लिए मैंने काफी मतलब कि फाइट की, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ये देखें बच्चे गोरे हो काले जो ब्राउन जो भी हो हैं तो हमारे ही ना, इन्होंने इनके लिए यूज होगा ताकि अगर उनको फ्री बस से कोपनहेगन में मिलेंगी तो इनको फिर गाड़ियां लेने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कि वो भी एक कॉइन आर्मस्ट्रांग जिसे कहते हैं ना, उससे फायदा होता है। इसी तरह आपको पता है कि मैंने एक नुक्ता जो आपके रेडियो में भी कई बार कहा है, वो जो हमारी पार्टी पिछले 10 साल से कह रही है कि ये जो फोक तो कॉइंट है, मतलब के फ्रूट हो गए या सब्जियां हो गई, इन पे मॉम्स हटाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं, ये भी हमने मतलब के बात मनवा ली कि होना चाहिए। और बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे हमने कहा है कि देखा जाए कि उसका जो मॉम्स है वो किस तरह हम आधा कर ले, जो कि आपके मेरे हम सबके फायदे में आ सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हैं, जिस पे फोकस होना चाहिए। इसी तरीके से हमने कहा है कि हमने एक हैंडिंग्स प्लान जो है, जो गसीसमे के ऊपर सही तरीके से नहीं बनाया गया, गसीसमे जो होता है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होता, जो दूसरे रिलीजियस उनके ऊपर भी हो सकता है, कालों पे भी हो सकता है जो रिलीजियस नहीं है, तो तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने वर्क करना है, हमने

0: एक हैंडलिंग्स प्लान बनाना है, एक मंशूर बनाना है कि किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो फाटना वॉल होता है, जो खवातीनों के ऊपर, जो मतलब के उनके हस्बैंड या ख्यास्ता या बाहर से कोई जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उन पे हमला करते हैं या रेप वगैरह होता है, इस पे भी ज्यादा हमने फोकस डालना है कि सही तरीके से इसको कवर किया जाए पुलिस की तरफ से भी, और इनकी जो सपोर्ट बाद में की जानी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत फोकस डाला है, कहा कि होना चाहिए। फिर आपने एक बहुत मतलब के अजीम बात की है, वो ये है कि आपने कहा कासम आप गैर मुल्कियों के बारे में बहुत बात करते हैं, उस टॉपिक पे क्या हुआ है? उस पे ये हुआ है कि जैसे कि आपने भी नोट किया होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक नई हुकूमत बन गई है, तो मेरे फ्रेडरिकसन को कहा गया था कि आपने ये जो वैकेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो मंजूर है कि अगले 4 साल क्या करना है, इस पे आपने गैर मुल्कियों के ऊपर तो सख्ती के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। और उसकी ये वजह है कि हम इस सपोर्ट में नहीं है कि और सख्तियां होनी चाहिए। हम तो ये चाहते थे बल्कि कुछ नरमी होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन इस हद तक हमारे पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं था। मतलब आपने ये भी देखना है ना कि मुरगार बैठे हुए हैं, एस एफ बैठे हुए हैं, गाड़ी खैर बैठे हुए, गाड़ी खैर भी के जो चेयरमैन है माथी दिल गोर, बल्कि खुद ही कहा था कि हमने और नरमी नहीं डालनी, बल्कि हमने जो है उसके ऊपर फोकस डालना है। हमारे लिए जो सबसे जरूरी था वो ये था कि मेरे फ्रेडरिकसन ने कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशन है, इसमें से हमने बाहर निकलना है ताकि हम और भी सख्तियां कर सके। इधर हमने बहुत जोर लगाया है, और मुझे पता है इनसे ने भी लगाया हो, शायद गाड़ी खेल ने भी लगाया हो, हमने जोर लगाया कि हम मेहनत से गाड़ी से कन्वेंशन से बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे आपको ओपन मौका मिल जाएगा सख्तियां करने के लिए। तो वो उसके लिए वो अब राजी नहीं है। तो इधर भी मैं कहूंगा कि हमारे लिए एक विन रहा है। तो इसके अलावा मैं और चीज बताता चलूं कि जैसे कि आपको पता है कि जिन बेचारे फैमिलियों के बच्चे होना मुश्किल होते हैं, उनको डॉक्टर से हेल्प मिल सकती है, उनको 6 बार फ्री ट्रीटमेंट मिल सकती है ताकि उनके 2 बच्चे हो सकें। 6 के बाद अगर वो मदद चाहते हैं तो कई बार 80-90 लाख करोड़ तक पैसे लग जाते हैं बेचारों के, क्योंकि वो एक तीसरा बच्चा चाहते हैं या दूसरा बच्चा चाहते हैं, या 6 बार वो ट्राई जो कर सके हैं उससे नहीं हुआ। उधर उन्होंने ओपन कर दिया है कि जितनी मर्जी बार आपको आप ट्राई करना चाहते हैं, डॉक्टर मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं, आपको मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह बच्चों के ऊपर भी फोकस है। इसके ऊपर भी मैंने आपके हुए रेडियो में एक दफा बात की थी कि बच्चे जो सोशल मीडिया में बहुत आ जाते हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुआ है, बातचीत भी हुई। इधर भी उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो 15 साल तक बच्चे होते हैं उनके वो सोशल मीडिया पे मतलब नहीं अपना एक अकाउंट बना सकते। इसी तरह जो जो मुझे जो जैसे एक जो नुकता जिस पर मुझे जो हंसी आई थी वो ये था कि इन्होंने कहा है कि जो हमारे यूथ हैं, टीनेजर हैं, बच्चे हैं, जिनको क्या कहती हैं सुकिस के प्रॉब्लम है, जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमने एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। बल्कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन हंसने वाली बात ये है कि जो पिछली गकेंग थी, जो सोशल डेमोक्रेट की थी, वेंस की थी, मुड़गार की थी, इन्होंने एस सेफ अगाड़ी खेल उन सेवो के थियो के साथ मिलके इसको हटा दिया था, वो भी हम दोबारा ले आए हैं, जहां इन क्या कहते हैं यूथ जो है इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और फिर बात ये भी चल रही है कि 2030 में, बल्कि जब उस वक्त जो जो हुकूमत आएगी, उन्होंने स्केल स्टोपल से दोबारा इन्फ्योर करना है ताकि वो एक फ्री डे दोबारा आ जाए। इसके अलावा फिर जो हमारी कॉइन ऑम सीलिंग जो होती है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी मतलब के हाईलाइट्स की, उसके ऊपर हमारी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इन चीजों में मैं कहूंगा कि हमारी काफी विन रही है, और हम रकेंग में नहीं गए। मैं तो चाहता था देखना ये कि हम रकेंग में भी होते ताकि हमें भी एक एक मौका मिलता, एक ऐसे ओहदे पे बैठ के जहाँ हमारी बात भी रोजाना सुनी जाती मीडिया में, क्योंकि अगर मिनिस्टर होते हैं तो जाहिर आपकी पार्टी की बात ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन हमारी पार्टी ने कहा था कि हम कुछ ऊंचे का हैं, और उसकी वजह ये है कि ये रकेंग कोई चीजें ऐसी चाहती हैं जिसमें हम साथ नहीं दे सकते, इसलिए हम स्टूडियो 25 दफा बनेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली बार देखा जाएगा। जी राय साहब,
1: कासिम आप कोशिश तो करते रहते हैं। आप देखें स्वीडन आपके पड़ोस में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जो यहाँ की डेनिश पीपल्स पार्टी है आपकी उनसे हमेशा मोहब्बत रहती है। पिया ख्यास्को चलेगी, उनकी जगह दूसरा चेयरमैन आ गए हैं, तो मोहब्बत का सिलसिला तो चलता रहेगा। इसी तरह स्वीडन में इलेक्शन में ये मुसलमानों की खासकर बात की जा रही है, अब गैर मुल्कियों की बात की नहीं जा रही, तो यहाँ भी ये सिलसिला होना चाहिए कि गैर मुल्कियों से फैसला तो ले लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर ये वोट भी ले लेते हैं, गैर मुल्कियों की भी वोट ले लेते हैं। जब हमारी बारी देने की आती है, आपने डेडिकेटेड मिनिस्टर की बात की, ये हमेशा इक्तदार में रहे ज़्यादातर जो है ना, लेकिन कभी इन्होंने कोई ऐसा गैर मुल्कियों के लिए कोई मेजर काम तो किया नहीं है।
0: देखें जनाब, मैं जो डिबेट करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं बॉल अपनी क्या कहते हैं गेम लाइन तक रखूं। अब आपने गरीखेल वेस्ता की बात की है तो कुछ हद तक मैं आपका साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसी गरीखेल वेस्ता के बंदे को बुला के इस चीज के ऊपर बात कीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: तो मैं आपसे जो है समेरा नवा की बात करना चाहता हूँ कि पहली खातून हमने देखी है, किसी गैर मुल्की ने अभी तक उसकी कोई मुखालफत नहीं की।
0: मैंने तो फेसबुक में मुखालफत भी देखी और ये भी देखा है कि उसके हक में भी लोग बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे भी है हमें खुश होना चाहिए इस बात पे कि फाइनली एक गैर मुल्की को हम एक मिनिस्टर की पोस्ट में भी देखने लग पड़े हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस डाल रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉबों में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्लब्स में प्रोफेशनल लेवल पे लगे हुए हैं, हम हर तरफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और मेरे लिए ये कहना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए कि जहां जहां हम रिप्रेजेंट हो सकते हैं सोसाइटी में उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतने ही हम अपने ऐसे देखना है कि ये हम एक ईंटे लगा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उनको पता चले कि ये मौका उनको भी मिल सकता है। हम एक दरवाजा खोल रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है और जो पहले बंद रहा है, हमेशा बंद रहा है। अगर आप फुटबॉल टीम को लेने, टेंस फुटबॉल जो है, अगर आप इसको लेने तकरीबन 15-16-17 साल पहले कह लेते हैं, उस वक्त कोई गैर मुल्की डेनिस टेंस लेंस हॉल पे नहीं था। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली गैर मुल्की की बात कर रहा, नहीं था, वो लेते ही नहीं थे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि आस्ता आस्ता आना शुरू हो गए हैं, रिप्रेजेंट शुरू हो गए हैं, जिस तरह उधर आना शुरू हुए हैं लेंस हॉल पे नेशनल टीम पे, इसी तरह हमने देखा कि क्लबों में भी वो आना शुरू हो गए हैं, सुपर लीग है जो प्रोफेशनल फुटबॉल जो टूर्नामेंट होती है उधर भी आना शुरू हो गए। मतलब एक दरवाजा अगर खुल जाता है तो बाकी जो आने वाली जनरेशन होती है उनके लिए आसानी हो जाती है। अब जो समीरा नवा आई है, मेरे ख्याल से उसको क्रिटिसाइज करने से पहले हमें उसका काम देखना चाहिए। हमने उसको पहले भी देखा है कि वो क्या बोलती है, क्या काम करती है। कोई लोग उसके खुश हैं जिस टॉपिक पे वो करती है, कोई लोग कहते हैं कि इसने इतना नहीं किया हमारे मतलब के गैर मुल्क हक में इतना नहीं किया। लेकिन ये भी मानना पड़ना है कि उसने गैर मुल्की होने के नाते बहुत सारी मार भी खाई है। जब वो इलेक्टेड हुई थी एज अ पार्लियामेंट मेंबर, तो कोई पार्टियां ने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो डैनिश है ही नहीं, अपने आप को डैनिश कहती फिर रही है, ठीक है। तो मतलब कि उसके ऊपर क्रिटिसाइज इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हुआ था, लेकिन उसकी सपोर्ट में भी बहुत सारे आए थे। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि पहले इंसान को अपना एक काम करने दें, फिर आप उसके काम से उसके रिजल्ट से आप उसको जज करें। पहले जो हुआ ठीक है, कोई उसके हक में कोई उसके हक में नहीं हूँ, मैं कैसे हूँ वो मैं अपने तक रखूंगा।
1: बड़ी अच्छी बात की है कासिम, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मसरूफ़ हैं आप, हमें टाइम देते हैं और आप मेहनती हैं, वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं, अपनी पार्टी के भी हार्ड वर्कर हैं, और आपकी जिम्मेदारियाँ ये कैटेगरी सी की तरफ भी जो है, फाइव की तरफ भी जो है ना, ये अपनी पार्टी के कानों में ये बात डालें कि अच्छे लोगों जो है ना, अच्छे लोगों की वजह, अच्छे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, किसी चंद लोगों की वजह से जो है इस कानून को आपने क्यों बनाया हुआ है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, और यही जो कोशिश होती है ना, तो जो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि देखें, अगर आप एक पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं बैठे या फॉर्कसिंग, तो आप कोशिश करें कम से कम अपनी पार्टी के अंदर एक इन्फ्लुएंस लाएं जहां वो आपकी बात भी सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैंने पिछले 10 साल का बल्कि पार्टी बनाई थी इनके साथ मिलके, और काफी मतलब के ऊंचे लेवल पे भी इनके साथ बैठा रहा हूँ और बैठा भी हूँ अभी भी। तो उधर बातचीत होती है, क्योंकि अब देखें जाहिर है हम भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि इस लेवल ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट पची होने का फायदा ये है कि अब जैसे फिलिस्तीन के बारे में है कि हम अभी भी उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, जिस तरह हम हमेशा उठाते आए हैं, क्योंकि सबको पता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो वो है अलचैना चुल। और वो मैंने बात उनसे की है, मैंने कहा कि गैर कोल्डे में इसके बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया, वो क्यों? तो उन्होंने कहा था कासिम हमारे पास मेजोरिटी नहीं थे, क्योंकि अगर अब हम देखें कि अब अगर ये जो केक बनी है स्टूडेंट पची से, अगर अलचैना चुल अपने मंडेट ना डालते तो फिर भी ये गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने डालने हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें मिल गई हैं, और अब हम साथ में जिस चीज पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस हक के लिए हम फाइट करना चाहते हैं हम अभी भी कर सकते हैं। तो वही उम्मीद में रखता हूँ कि हमें पार्टी के साथ मिलकर उधर पुश कर सकें जिस तरफ हम चाहते हैं कि पार्टी जाए, इंशाल्लाह।
1: कासिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जनाब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और सामईन को मेरी आवाज़ सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जनाब।
1: सामईन नाज़रीन, ये थे कासिम नज़ीर जो के बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुलकर कह दी, वाजे करके कह दी कि किस तरह पीछे बैक पे बैठकर काम किया जाता है। अगर बंदे की नीयत अच्छी हो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सब नाज़रीन, हमारा किसी मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई बात करना चाहें तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। सामने नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बरह रास्त हाजिर है। तमाम ने अपने सुबह इंट्रो में कहा था कि बहुत सारे मेहमान होंगे, आपको पता है कि इलेक्शन कम्यून्स के होंगे, पार्लियामेंट के होंगे, काफ़ी टाइम लगा जो है वो हुकूमत बन गई, वजारतें भी तकसीम होगी और आगे काम करना है, तो यही की असर जो मसला है कि आगे काम करना है तो उस काम का कैसे किया जाएगा, जिसमें गैर मुल्कियों का क्या रोल होगा, और अब गैर मुल्की जो हैं वो दो वज़ीर भी बन चुकी हैं, तो देखते आने वाले दिनों में ये क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रखी जाएं, कोई ख़बरें रखी जाएं, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। तो हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान अली मौजूद हैं, जिन्हें आप अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पेशे के लिहाज से ये उस्ताद हैं, तो अब सियासी उस्ताद भी, डेफिनेट इनको उस्ताद के नाम से याद किया जाता है। तो ज़ीशान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको, सब सुनने वालों को, और पहले से ही आपको थोड़ी सी माजत कर दें, ये महफिल में छोटे के साथ फुटबॉल पे आया हूँ, बाहर लड़की ने काफी तंग किया, तो वो जैसा नहीं करते
1: सियासतदान वो है जिसके पास टाइम होना चाहिए, हर तरह का टाइम होना चाहिए, एलर्जी में भी जो है वो टाइम निकालना पड़ता है।
3: हाँ जी, वो तो फिर ऐसे ही आप फोन करेंगे तो फिर जरूर।
1: जिस सियासतदान के पास टाइम नहीं है उसे चाहिए कि वो सियासत ना करे,
3: वो तो फिर ऐसे ही, मतलब इसके लिए टाइम निकालना पड़ता
1: है। आप जैसे लोग और भी लोग हैं, अच्छे जॉब हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, स्टेटस ठीक ठाक है, तो आप आराम से बैठे रहें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, आपको जरूरत क्या सियासत करने की?
3: बस असल में सियासत वही है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरे से भी लोग बात करते हैं कि मतलब क्यों करते हो, कौन सा जाती मुफाद है तुम्हारा, मैं कह यार जाती मुफाद के लिए अगर सियासत करनी होती फिर सारे हम लोग गाड़ी बैठते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम काम है, घर है, गाड़ियां है, मतलब तनख्वाह आ जाती है, इतनी आती है कि और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो पहले अगर आप देख लें, मैं मतलब टीचिंग के साथ 5-6 साल बिजनेस अपना साथ में करता रहा हूँ, मगर अब वही टाइम सियासत को देना पड़ रहा है। तो ये सियासत अगर आपने करनी है तो वो एक शौक वाकई में ही और एक फिक्र लाजमी आपके में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उस तरह से कोई और मुफाद नहीं आएगा आपका कि जी इकोनॉमिक के लिए कर रहे हो या किसी के लिए कर रहे हो, नीयत वही इसीलिए करते हैं, नीयत साफ रखे अपनी और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। जाहिर है अगर अंदर आ जाए आप मिनिस्टर बन जाए वाकई अच्छी लर्निंग है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तो एक दूसरी गेम है ना, हम लोग जो कर रहे हैं
1: वहां पहुंचने के लिए सियासी स्विमिंग सीखनी पड़ती है
3: बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। अब आप देखें माशाल्लाह से वो नावा बन गई है मिनिस्टर, जो पहली जितना माइनॉरिटी वुमेन और मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ, उसको भी अगर आप देखें, मैं मेरे ख्याल से पहली दफा उसको मिला हूँ 2010 में, और तब अभी वो वॉस किले में अपना सारा जिस तरह कहते हैं ना शुरू कर रही थी, उसका एक एम था, और आज देखें 2026 हो गए, मतलब 20 साल से वो लगी हुई है इसमें, अपनी मेहनत करने में, काम करने में, और हमारे कुछ लोगों को लगता है कि बस रातों रात आ गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज्यादातर एक्टिव होते हैं कम्युनल वेल में, कम्युनल वेल में तो आपको पता है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, कम्युनल वेल में काफी जगह अंदर आना काफी आसान है अगर आपने पार्टी सही सिलेक्ट की हो तो, उधर तो आपको बेशक डैनिश बोलने ना आए, आपके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप अंदर जाके बैठ जाते हैं, और हमारे लोगों को लगता है कि जी फलके सिंह की भी जो सी पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे ही चलती है, तो वो ऐसा नहीं है। फलके सिंह है, नेशनल असेंबली है, मांगती है, वो बहुत सेक्रीफाइस मांगती है, उसके लिए आपको अपना भी काफी टाइम देना पड़ता है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप माशाल्लाह देख ले हमारे मलिक सिकंदर साहब, उनका भी आप लास्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, मतलब बाहर बैठ के भी बेशक वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए, कितना एक्टिव है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए
1: काम करना जो होता है उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आपने एक देखा बड़ी चीज हमें मिली है, हैरानगी की बात है, और ये बात ठीक भी है कि इस दफा समेरा नवा जो बनी है मिनिस्टर बनी है तो सब ने मुझको अप्रिशिएट किया, किसी ने मुखालफत में बात नहीं की।
3: नहीं जी, क्योंकि वो अपना आप बना के, मतलब काफी साल लगा के आई है, एक अपना आप बना के आई है, और अगर आप देखें लोग अब बोलेंगे जिसने वो अच्छा जी इंटीग्रेशन मिनिस्ट्री वगैरह ये क्यों नहीं ली, तो ये एक चीज अच्छा है, पॉजिटिव है, یہ ہے کہ کلیما منسٹری ہے, یہ اصل میں پہلے مرغا رن کے پاس رہی تھی, لاسٹ ہو کو بڑا اچھا منسٹر رہا اس پہ, جو اس نے بڑی منسٹری ایک لے لی اپنی, اور گاڑی کھیل کی جو منشور ہے ان کا, اس میں بھی کلیما کافی اسپلائن کرتا ہے, تو اچھا ہے وہ اپنی ایک دوسری طرح سے اپنی پہچان بنائیں گی, اور پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے کل کو انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی ہوگا.
1: چلے جی, ایسے لوگوں نے جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے, محنت کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے, کل وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. تو آتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف, تو آپ کی پارٹی کے کتنے وزیر بنے؟
3: ہمارے چار بنے ہیں جی, ہمارے پہلی پچھلی بار میرے خیال سے چھ تھے, اس بار چار بن گئے. تو لاسٹ لے کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے, وہ ایسے سے سب کو پتا تھا کہ وہ تو فورن منسٹر ہی رہے گا, جون سی بھی گورنمنٹ آتی فورن منسٹر اسی کو چننا تھا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس پوسٹ پہ بیٹھا اور جو دنیا کے حالات ہیں نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہ رہا ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو یعقوب انگل سمتھ ہے جو کلچر منسٹر تھا, اس کو اب ٹیکس کا منسٹر بنا دیا. دیکھیں اسکیڈ منسٹر ہمیشہ بڑی انٹرسٹنگ رہتی ہے, وہ کہتے ہیں ایسی منسٹری ہے جس میں پتا نہیں, جو بھی منسٹر بنتا ہے اس کا کام کافی کافی ہوتا ہے. تو باقی ایک جو منسٹر ہے وہ رہ گئی ہے جو پہلے بھی تھی, کرسٹینا ہیل, اور فاسٹنگ ہوئی تھی ان سے کی, اور ساتھ کی چلی سینگ بھی اس کو دے دیا. تو ایک منسٹری انہوں نے ختم کیا نا, چلی سینگ منسٹری, تو اس کو دو منسٹریاں اس کو ملا کے اس کو دے دیا. اور پھر جو سب سے اچھا سرپرائز ہمارے لیے تھا وہ, اور اسپیشلی ہم جو اوما ان کے کینڈیڈیٹس تھے, ہماری جو اسپیس کینڈیڈیٹ تھی ادھر کی مونیکا ہوپنگ, اس کو سوشل منسٹر اور نوری ساما پائت کا بنا دیا گیا نا, تو وہ کافی اچھا ہو گیا.
1: کیونکہ آپ ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کس طرح کی ہیں, کس سوچ کی مالک ہیں.
3: ویسے وہ کافی اچھی رہی ہے کام کرنے میں میرے ساتھ بھی, جب کیا کہتے ہیں الیکشن کے دوران بھی فون وغیرہ بھی کرنا, جب میں ڈبیٹ پہ بھی گیا تھا ادھر ہیلو کم نیشن میں, اس کا بعد میں مجھے فون بھی آیا کہ ذیشان مجھے وہ مونٹوز کا اور اس کا جو ان سا کیا کہتے ہیں خاص سوال ہی وغیرہ بتا رہے تھے کہ یار آپ کا جو مرغارنے کا بندہ ہے اس نے کافی اچھی ڈبیٹ کی ہے, تو یہ کافی بیک اپ کرتی رہی ہے نا میرا بھی ڈیورنگ دی الیکشن, تو کافی اچھی پیشے سے ڈاکٹر, مطلب اچھی جس کو کہتے ہیں کاؤلی بھی اچھی ہے, تو میرا جتنا ایکسپیرینس اس کے ساتھ رہا ہے کافی اچھا رہا ہے. اور اس کا جو کہتے ہیں کمپینیل اس کا ہسبینڈ تھا وہ بھی بہت بڑا نائس بندہ, بندے اچھے.
1: ذیشان سارے سیناریوں میں جو ہیں وہ غیر ملکی کہاں, ان کی ساری پارٹیوں کی جو کمیٹیاں بنیں گی جو کچھ ابھی تک سامنے نظر آیا اس میں تو غیر ملکیوں کا کچھ نظر نہیں آ رہا.
3: نہیں وہ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا, میں کہ میں نے بھی یہی سوال کیا تھا, وہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے ملک صاحب سکندر صاحب نے بھی آپ کے پچھلے انٹرویو میں وہی بولا ہے کہ غیر ملکیوں کے بارے میں مطلب نہ ہونے کے برابر ہی ہے نا. یہ ہے کہ ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں سختیوں کی طرف نہیں جا رہے, مگر یہ بھی ہے کہ ایزی بھی نہیں کرنے لگے ہمارے لیے, مطلب جو ہے وہی رکھیں گے. سرپرائزنگلی اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو گیا کہ یہ جو قاسم مشتاق لون فار اقبال اور جس طرح کے ان کے لوگ تھے سوشل ڈیموکریٹ کے, ان کو انہوں نے تھوڑا سائڈ پہ کیا ہے, مونتوز کو جیسے بندے کو لے آئے ہیں, اور مونتوز کو کے ساتھ ہم ہماری کمیونٹی کی تو کافی لگتی ہے, مجھے پتا ہے کافی دفعہ اسے دیکھا بھی ہوا ہے, لو میں ایکٹیو رہتا ہے, میری اس سے پرانی گپ شپ غوروں کے ٹائم سے بھی ہے, مطلب ہماری گروا والی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے. دیکھیے ان سے کشوز نشتہ اس بار کافی ہمارے وہ جسے نہیں کہتے مطلب کا آیا ہے, اور ہمارے جتنے دوست یار جو سوشل ڈیموکریٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مجھے پتا ہے اس کی اچھی بات چیت ہے, تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے بات جتنی بھی ہیں آگے لے کے
1: چلیں, یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا. لیکن یہ جو بات چل رہی تھی پارکنگ کی بھی بات ہوتی ہے, انیس لسن والی آپ کی حکومت میں شامل تو ہیں لیکن ان کو وزارتیں نہیں ہیں, فشری تو چار جماعتیں شامل ہیں. یہ جو دانتوں کے ڈاکٹرز کا بتایا کہ دانتوں کا علاج مفت ہوگا, تو لوگوں نے یہی سوچنا شروع کر دیا کہ دانتوں کا علاج مفت ہو چکا ہے, اور اسی طرح 22 سال تک کا جو سفر ہے سفری جو سہولیات ہیں بسوں کی ٹرینوں کی یہ ہو چکی ہیں, لیکن میرے خیال ہے ابھی یہ پیپروں میں ہی کام ہے, خالی باتوں تک کیا تک ہے.
3: جی راجہ صاحب اصل میں یہ ایک سمجھنے والی بات ہے پولیٹکس میں, اسپیشلی ایک ویلفیئر سوسائٹی میں ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی فری پبلک ٹرانسپورٹیشن, دانتوں کے ڈاکٹر, وہ تو آپ بھی چاہیں گے میں بھی چاہوں گا, فری اسکولنگ ویسے ہے, مطلب لے ہیلپ جو سول ہیلپ ہے وہ ساری فری ہے, مگر فری تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا جی ان دی اینڈ, फ्री हम सब चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं से तो फिर पैसे आने ही होते हैं। तो फिर वो एक चीज हमेशा रही है कि इन दी एंड पैसे तो हम नहीं देने, इधर से दें कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े।
1: तो पैसे तो फ्री करते आप देखे ना, ये जो पेंशनिस्ट हैं या सीनियर सिटीजन हैं या हैंडीकैप पेंशनिस्ट हैं, लेकिन इनकी जो सहूलियात मिलती हैं फिर घूम घाम के, तो फिर पेपर तो डॉक्टर्स भी वहीं भेजते हैं कम्यून के पास, कम्यून सपोर्ट करती है। तो अगर ये मैं कहता हूँ ये एनकों वाले और ये दांतों वाले मेरी नज़र में एक माफिया की शक्ल में है कि इनका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है। आपको अस्पताल में जो अखराजात होते हैं वो फ्री हैं, तालीम जिस तरह आप कह रहे हैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी फ्री है, दांतों का इलाज स्कूल में बच्चों के लिए फ्री है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, या कि पीछे ऐसा माफिया है जिसके सारे मफादात इन चीज़ों में, जिस तरह शुगर की दवाई जो है वो अभी तक ईजाद नहीं हुई, हम एटम बम बना चुके हैं, ब्लास्टिक मिसाइल बना चुके हैं, शुगर की दवाई ऐसी नहीं बना सके जो एक ही बार खाएं तो खत्म हो जाए।
3: बस असल में वो फ्री करते करते के चक्करों में वही हो जाता ना, वो ब्यूरोक्रेसी बड़ी आ जाती है। मेरी लड़ाई हमेशा थोड़ी सी ये जो रेड पार्टी जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल लेवल पे गोल्फ अच्छी है, इनके साथ मेरा हमेशा यही रहा है कि इतनी ब्यूरोक्रेसी आ गई हर जगह, स्कूल में भी आप लोग देख लें, मतलब इतना ब्यूरोक्रेटिकल वर्क हो गया कि मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ पढ़ाने से ज्यादा ये जो बाकी काम मेरे से करवा रहे होते हैं ना, ये जान तंग की हुई है। और इधर मुझे थोड़ा सा जो फ्लो इकोनॉमी है अच्छी ज्यादा इसलिए लगती है कि ये थोड़ा सही करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कम हो, पेपर वर्क कम हो और आगे जाकर मतलब फायदा हो हम लोगों को, ये चीज बड़ी जरूरी है और ये कर नहीं पा रहे क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि पता नहीं इतना पेपर वर्क है हर चीज का कि बंदा पागल हो जाता है। सो ये एक बड़ी वजह रही है हमेशा। मैं भी जब मुझे कभी पूछते हैं बफा है कि इन बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी है, मेरी हमेशा ये लड़ाई रहती है यार पेपर वर्क बड़ा इकट्ठा कर दिया तुम लोगों ने, हर चीज फ्री करने के चक्करों में हर चीज को डॉक्यूमेंटेशन करो। और आप वही देख लें हमारे सोलह स्पेस का क्या हाल हो गया, आप और हम लोग कितने इतने साल हो गए हमें कि पहले कितना अच्छा होता था, अब आप फोन करते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को करते हैं जी तीन तीन चार चार छह छह महीने बाद टाइम मिलता है, अगर आपकी कोई फसीकनिंग हो अगले हफ्ते टाइम दे देते हैं आप।
1: और ये भी एक सवाल या निशान, अगर आपकी फसीकनिंग है तो आपको जल्दी टाइम मिलता है।
3: बिल्कुल, और वही डॉक्टर है वही फोन है, अगर आप उसे बोलो ना मैं फसीकनिंग मेरी फसीकनिंग कवर कर रही है तो अभी हफ्ते का टाइम मिल जाता है। ये
1: और छह महीने या तीन महीने के बाद जो टाइम मिलता है वो 10-15 मिनट में बात जाते हैं, खुदा हाफिज़ आ जाओ अपने डॉक्टर के पास चले जाओ,
3: बस ऐसे ही है, वो गलती से टाइम खत्म हो जाए अगर वो बोले कि ठीक है तो फिर नए सिरे से। तो ये एक काफी चीज मैं देख रहा हूँ कि
1: तो ये किसके अंदर आती है, इसको किसने ठीक करना होता है
3: इसको, तो ये इसको ये पॉलिटिकल सिस्टम ने सही करना है जी, ये जो ब्यूरोक्रेसी सारी बनाई हुई है इसको कैसे खत्म करना, ये एक चीज है। आप तो मैं बताऊं मेरा एक जो एक पर्सनल शौक भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आने के लिए है, वो ये भी देखने के लिए आया कि यार ये इतना ज्यादा इनविक्लर क्यों है, हर चीज को इतना इनविक्लर इन्होंने क्यों कर दिया है कि जो अच्छा बंदा है नॉर्मल बंदा है जो कोई सलाहियत रखने वाला बंदा है वो पॉलिटिक्स में इतना, जो एजुकेटेड बंदा कम कम लोग आना चाहते हैं आजकल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं पॉलिटिशियंस बैठे हैं मिनिस्टर्स जो आप बैठे हैं, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि काफी सारे मिनिस्टर हमारे ऐसे बने हुए हैं इनके पास अवैध सफाई कोई नहीं है, ये पढ़ के आए हैं बस, वो यंग एज से पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं, स्टेट्स कॉन्स्केप ऐसे कुछ पढ़ के आ गए हैं, काम कभी इन्होंने 5-10 साल किया नहीं पाया। तो ये भी बड़ा मसला है कि जो हमारे बैठे हुए हैं लोग अंदर ये ऐसे हैं जो बस पैदाइशी पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हैं, बाहर दुनिया नहीं देखी, जिन्होंने काम खुद नहीं किया वो बैठे हुए हैं, तो ये भी आपको पता है ये भी मसला हो जाता है और ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो ये एक मेरी बड़ी इंटरेस्ट रही है पॉलिटिक्स में घुसने के लिए कि मसला क्या है वैसे इधर की पॉलिटिक्स पे, वो मैंने कहा तनकीद
1: आपके पास टाइम है चूंकि आप सुरसा में भी बैठे हुए हैं तो आपकी मुलाकातें भी आपके चेयरमैन से लीडर से होती रहती हैं किसी न किसी मौके में या आप लोग इकट्ठे होते हैं, ये जो कैटागरी सी वाला मामला है, देखें जो अच्छे शहरी हैं जो अच्छे लोग हैं, जो देखें ना मुझे छोटा बेटा कह रहा था कि अभी से लाइसेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सुसिकनी कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यूरोप में एक ऐप्स आ गया उस पर आप करें तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई। अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो कैटागरी सी में ऐसी बना लें जो अच्छे लोग हैं उनके तो ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए
3: जी, बिल्कुल, और वो मैं लास्ट वीक जब आपसे बात हुई थी मैं यही सोचता रहा हूँ कि अब हमें करना क्या चाहिए और क्या करें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे इतने बंदे एक्टिव हैं, इतना इतना टाइम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करने में भी, तो थोड़ा सा टाइम इधर किसी तरह निकाल के ना अब हम लोगों को वो क्या कहते हैं ना ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। मैं ये इतना मुझे होप सिचुएशन में रहा है, अगर पॉलिटिक्स में भी आगे पीछे देख के पता चल गया है कि लॉबीज्म डेनमार्क में काफी चलता है और लॉबी कोई भी हो, और ये है कि इधर भी फंडिंग होती है, इधर भी फंडिंग होती है, क्रोने लगाए जाते हैं पार्टीज पे, हमें भी आना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। मतलब एज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जाओ, चले मुसलमानों को इकट्ठा करना और मुश्किल हो रहा है, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में माशाल्लाह अब मैं इलेक्शन लड़ा हूं तो देखा काफी अपने बुजुर्ग काफी बड़े हैं, हमारे कितने पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जो इधर पले बड़े हैं मगर जो इधर ग्रीन कार्ड पे भी आए थे कुछ साल पहले वो भी बड़े पढ़े लिखे बड़ी अच्छी पोस्टों पे। अब हम लोग सारे इकट्ठे हों किसी तरह, कोई इनको इकट्ठा करे, अम्बेसी की मदद ले, साहब मैं सुन रहा था कि अम्बेसी से भी काफी लोग खुश हैं, और लॉबीज्म की जाए, कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट अब कितने हैं, हम सब किसी ना किसी पार्टी में कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट लेके चलते हैं, फंडिंग करनी पड़ी तो पार्टीज की फंडिंग भी करो जी, क्योंकि फंड्स की हर पार्टी को जरूरत है, फंड दो और अपनी मनवा लो, ऐसा ऐसा ऐसा चलता है, इधर भी चलता है लॉबीज्म।
1: ईशान मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, स्वीडन में आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं गालबन 13 सितंबर को हो रहे हैं, उसमें तो कमून के पार्लियामेंट के होते हैं, तो उसमें भी जो जिस तरह की डेनिश पीपल्स पार्टी डेनमार्क में इसी तरह की स्वीडन में है, तो उन्होंने अब बयान देना शुरू कर दिया है, ये जो आज़ादी होती है बोलने की कहने की, कि अब जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, गैर मुल्कियों के लिए नहीं बोलते, टोटल टारगेट जो किया जा रहा है मुसलमानों को। तो अब एक सवाल ये समझ नहीं आता कि हमें इबादत गाहों की भी हमें इजाज़त है, इतनी इतनी अच्छी मस्जिदें बन गई, कल्चर सेंटर बन गए, सारी चीज़ें बन गई, इन्हें इन्होंने हमें इजाज़त दी है तो ये बनी है ना, लेकिन उसके बाद मसला ये है कि ये फिर क्यों बात करते हैं। तो बात अब समझ आती है कि जितनी चीज़ें ये इबादत गाह या चीज़ें बन चुकी हैं, ये सारी मुसलमानों की जो जितनी भी चीज़ें बड़ी बनी हैं, इनको कंट्रोल कोई और करते हैं बाहर से बैठे हुए लोग।
3: हाँ वो बाहर से भी है राजा साहब, असल में फिर वही आ जाता है कि सहूलियत,
1: ये गैर मुल्कियों को टारगेट नहीं कर रहे जो स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं डेनिश पीपल्स पार्टी, वो अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ।
3: असल मुसलमान से जी अल्लाह माफी दे, हम तो पूरी दुनिया में टारगेटेड है, क्यों, क्योंकि हमारा कोई वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, कोर ही नहीं है, कहीं कहीं इकट्ठे हो गए खड़े ही नहीं होते हम लोग। उन्हें पता है कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस वक्त वो ग्रुप है जाहिर है जो सबसे कम ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अभी भी आप देख लें, मेरी वही लड़ाई है कि अब जब गवर्नमेंट बनी है, ब्लू ब्लॉक ने यही कहना शुरू कर दिया जी कि जी उलनिंग फुले छीक मुस्लिम, फिर वही उठा लिया, और मैंने कहा भूत नहीं दे, खबर निकल रही है कि हमारे स्कूलों में बच्चे डेनिश मैथ नहीं पास कर पा रहे, इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए हम लोगों को, तुम लोगों ने फजूल का हुआ बनाया हुआ, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है
1: बताएं ना, प्रॉब्लम बना देते हैं, आप बताएं एग्जांपल दें कि मैं मुसलमान, आप मुसलमान नहीं है
3: या नहीं, हम तो देते हैं ना जी, और जो होते हैं वो तो कहते हैं अच्छे हैं, मुंह पे तो आपके हमेशा बोलते हैं, मगर बस ऐसी अच्छी हुई हर मुल्क में चली हुई है आजकल हमारे खिलाफ के, और हम कहीं से इकट्ठा नहीं हो पा रहे, कोई एक आवाज कहीं भी नहीं बनती हमारी, अनफॉर्चुनेटली। जो आपसे भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बात हो रही थी कि अगर आप हम सबको देखें जो पर्सनली लेवल पे मुसलमान मैं हूँ, अब मैं मुझे 40 साल हो गए पर्सनल, मुझे कभी कोई फील नहीं हुआ, काम मैं कर रहा हूँ, काम पे भी अच्छी रिस्पेक्ट है, काफी लोग जो मेरे दोस्त यार हैं आपको भी, हमारे जितने लोग कामों पे हैं कामों पे हमारी ठीक रिस्पेक्ट है, मगर ये जो मीडिया, ये जो एक छोहिक है, ये जो एक नैरेटिव है वो एक दूसरी चीज है, और उसमें जाहिर है सबसे कमजोर हम हैं, तो सारे ही हमें लताड़े होते हैं।
1: बहरहाल देखें ना, अल्लाह ताला ने टाइम दिया होता है लोगों को, अल्लाह यहाँ से इस मुल्क से जो सीखा होता है, लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एलर्जिक भी आपको है, लेकिन उसके बावजूद टाइम दे रहे हैं, ना टाइम दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको से टाइम आपका इंटरव्यू ना लूँ तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मुल्क से जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ इसने हमें दिया है, और जितनी हमारे पास सहूलियात होती हैं बात करने के लिए, टाइम के लिए होती हैं, उस पर अपनी ज़ाती कुर्बानी भी देनी पड़ती है।
3: बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें मेरी बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता होता हूँ वो भी कहते हैं यस, कहते हैं मैंने इधर नहीं रहना, इधर से चले जाना, मैं ठीक है चले जाना, जाओगे किधर, ठीक है जाओगे किधर, जाने के लिए बड़े मुल्क हैं जिनकी एजुकेशन है जा भी सकते हैं, बिल्कुल है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क ने देखे इतनी हमें और हमारे वालदैन को भी और हमें भी इतनी कम अपॉर्चुनिटीज दी है कि हम कहीं ना कहीं पहुंच गए, किसी अरब मुल्क में रह रहे होते, काफी ऐसे मुल्क हैं जहाँ ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज ये है कि आज हमारे कितने लोग हैं जो एजुकेटेड हो गए, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं, डेनमार्क की वजह से बैठे हैं, नहीं देखे सिस्टम की वजह से बैठे हैं। आज घर बैठ के गालियां देना बड़ा आसान है, मगर बीच में उतर के साथ इकट्ठे होके किस तरह ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं वही आपको कह रहा था, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए एक दफा, कितने कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, फंड बना लेते हैं जी। हम लोग पार्टियों को कहते हैं हम लोग आपको फंड देते हैं, ये हमारी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटी है, पाकिस्तान के वीजों का कुछ करें, फंड हम आपको, मतलब हम आपकी पार्टी को अगले इलेक्शन में इतना फंड दे दें, ये करें आप लोग हमारे साथ मीटिंग, मीटिंग्स होती हैं इधर भी। आप जब पार्टी को फंडिंग की जरूरत है, हम लोग इकट्ठे हो के सिर्फ बातें कर लें, कुछ उनको दें कुछ उनसे लें, कुछ देंगे नहीं कुछ मिलता भी नहीं,
1: ये म्यूचुअल ट्रांसफर होती है।
3: बस ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह हमारे पास इतने लोग हैं, इतना इतना अब जो पैसा हम कमा भी रहे उसको थोड़ा सा किसी अच्छी तरीके से थोड़ा टैक्टिकली लगाया जाए। जाहिर है ये है कि एक हम मुसलमान भी हैं, उसमें भी हमें काम करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर डेनमार्क में एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो तो सारे मानते हैं कि यार आपके तो वाकई पाकिस्तानी वेल एजुकेटेड, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी कमाई है, मगर हमारी मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कौन सा ऑर्गेनाइज है सही तरह की, सारे अपने अपने मतलब पाकिस्तान की पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर तो कम अज कम एक करके किसी तरह हम बढ़े ना, कि एक हो के आगे जाके बात कर सके। अब इंटीग्रेशन में से आपको बोला था मोदी तो उसका हो गया है, उसके साथ किसी तरह अच्छे से गुफ्तगु करें जाके, मगर गुफ्तगु नहीं सिर्फ, सोशल डेमोक्रेट वाले पूछेंगे हमारे लिए क्या है, उनके लिए फिर कुछ होना चाहिए।
1: बिल्कुल आप
3: हमें लॉबीज्म और इन सब से ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम करती है, हमें वो और तरीके सीखने पड़ेंगे। और इधर कम अज कम ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो अल्लाह खैर करे इन चीजों को।
1: मैं आपसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि यहाँ बच्चे जो है चौथी जनरेशन आ रही है, तो पहलों को तो छोड़ दे, उन्हें कहना नहीं चाहिए, उनको सलाम पेश करते हैं, उन्होंने इन ममालिक को ढूंढा, उनकी वजह से बच्चे आए, फैमिलीज आई, बड़े हुए, दामाद आए, बहुएं आई, इसे सारा सिलसिला उनको जो है क्रेडिट जाता है। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं, यहाँ की सियासत है, रहते इन ममालिक में, सियासत हम अपने ममालिक की करते हैं, वहाँ की पार्टियों की करते हैं, उनकी हम पार्किंग प्लेस बनाते हैं, कोई भी कोई आ जाएगा तो यहाँ के जितने भी सफरा हैं वो कहते हैं कि बेशक आप सियासत करें, अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में जा करें, यहाँ डनमार्क की सियासी पार्टियों की सियासत करें। इस तरफ लोगों को किस तरह के आप मैसेज देंगे?
3: उनको बस यही दूंगा जी कि पाकिस्तान की भी सियासत करें, मगर इधर जो आपकी अब इतनी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बन चुका है सियासत के अंदर, इधर थोड़ा सा उसको यूज करें ना जी, इधर भी हमें बताएं कैसे करना है, क्योंकि सियासत एक चीज है जिस मुल्क में भी हो उनमें काफी सिमिलैरिटी है। हमारे इतने बुजुर्ग हैं जो अगर पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं तो इधर भी हमें सिखाएं कुछ। अब कैंपेनिंग करते हैं पाकिस्तान स्टाइल से इधर डेनमार्क में करते हैं, अच्छे खासे वोट हासिल हो जाते हैं, तो ये नहीं कि पाकिस्तान स्टाइल से कैंपेन नहीं करेंगे आप तो इधर आपको फायदा नहीं होगा, फायदा होता है उस चीज का। तो पाकिस्तान में जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जिस तरह आपने वो कहते हैं ना कम कटवाते हो, इतना भी इधर हमें बताए ना, फिर हम इधर भी तो काम निकलवाए, थोड़ी सी बस एनर्जी इधर भी ले आए और अपना एक्सपीरियंस इधर हमें भी बताएं कि किस तरह होता है। और जो घर बैठे हुए हैं ठीक है, अच्छा है, जिंदगी चल रही है, मगर कॉन्ट्रीब्यूट करें जिस तरह भी कर सकते हैं, माली करें या अपने एक्सपीरियंस से करें, अपने वो फाउंडेशन से करें, कोई टाइम देता है उसको टाइम देने दें। हमारा बस मसला ये जो आगे आने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता है बस ये अपनी वाह वाह कराने आ रहा है। मैं सबको वही कहता हूँ, मैं कि जितना मुश्किल मेरे लिए
1: नहीं नहीं, लोग एक और लफ्ज यूज करते हैं इसे जो ये पर्सनली प्रोजेक्शन चाहिए।
3: मैं वही सबको कह रहा था, मैं कि जितना मुश्किल मेरे लिए सोशल मीडिया चलाना है, अपना वीडियोज रखना, ये करना, वो मेरे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टाइम लेता है। अब देखें ना इलेक्शन के बाद मैं भी थोड़ा ठंडा हो गया, सुकून का सांस ले रहा हूँ, मगर वही अब सारे कह रहे हैं यार तुम्हें सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना पड़ेगा, अखबारों में जैसा मलिक साहब हमारे कह रहे हैं लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, काफी कुछ आपको देना करना पड़ता है, इसमें बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस, बड़ा टाइम है। और वही मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि ये टाइम मैं दोबारा अपना बिजनेस बना लेता हूँ, भाई कोई कमी है हमें वही मैं पैसे कमा लूंगा, मगर ये एक मेरा चले शौक है, एक फिक्र है अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो एक पेशा ही है। तो मैं कहता हूँ चलो मेरा तो डबल फायदा हो रहा है ये करने से भी, मगर ये काफी लोग हमारे लीग हो चुके हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी चल रही है। राजा साहब घर बैठ के तनकीद कर देंगे मगर इन दी एंड काम है सबके पास, तनख्वाह आ रही है, गाड़ी है, घर है, खाना पीना है, इन दी एंड मतलब हमें उस तरह से मसला कोई नहीं। सो मेहनत कोई नहीं कर,
1: मेहनत तो कोई नहीं करते, बड़ी जबरदस्त बात की है। गिले शिकवे बहुत होते हैं, तनकीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम जीरो होते हैं।
3: देखिए अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट का काम शुरू होगा, अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफर अभी हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में। ये है कि मैं इसी सोच में हूँ आपके रेडियो पे बोलता हूँ कि किस तरह जरा इकट्ठा किया जाए अपने लोगों को, जो जो मेन मेन हर हर अपनी तंजीम के जो सदर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इनसे पूछने के लिए कि आपकी तंजीम क्या बातें करने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। सब लोग तो बातें सारे कर सकते हैं आपके पास हर वीकेंड आके, मैं भी कुछ, मगर प्रैक्टिकली क्या करना है आगे से, इसका कोई अब करना पड़ेगा हमें जो सा नहीं है काम। काफी अच्छी पोस्टों पे साहब वो इंटीग्रेशन मिनिस्टर आ गया,
1: तो हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा यार ये लोकल शोर पड़ा रहता है, मुझे भी लोग तनकीद करते हैं, ये क्या आपने गंद डाला होता है, तो कहते नहीं नहीं राय साहब छोड़े इन बातों को, लोगों की बात ना सुने, ये हमारा शुगल है।
3: बस फिर हम भी शुगल नहीं बन के रह जाएंगे। ठीक है जी, फिर जितने जो मैं जैसा करना वैसा भरना है राजा साहब, अब क्या कर सकते हैं। मगर देखे मेरा तो छोटा मुंह बड़ी बात है, मेरे से पहले इन कामों में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव है, मैं तो इसलिए कहता हूँ आगे हैं हम लोग।
1: चूंकि आपको लिखने पढ़ने का मसला नहीं है, आप लिखा करें अखबारात में लिखा करें, बिल्कुल ये आपकी जो टाइम निकाल के कभी कभी हफ्ते में महीने में दो महीने में आर्टिकल्स लिखने चाहिए।
3: हाँ जी वो तो है, असल में लिखने का मैं बड़ा बुरा हूँ, मेरा असल में अगर मैं अगर सैंपल से ना पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरा तो न्यूज देखने का दिल मेरा भी नहीं करता, जो आपस की बात है, मगर ये है कि जरूरी भी बहुत है क्योंकि हम वो क्या कहते हैं ना घर छुप के भी नहीं बस बैठे रह सकते कि जी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सब काफी कुछ अच्छा चल रहा है मगर अगर हमने कुछ किया ना तो फिर ये है कि बेहतर नहीं होगा कुछ भी,
1: कुछ बेहतर नहीं। जीशान आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हालत में हमें टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: सलाम अलैकुम। ये थे जीशान अली जो कि फुटबॉल ग्राउंड में थे, बच्चों के साथ फुटबॉल का मसला चल रहा था अपने बच्चों के साथ उनका, ये टीम वर्क होता है, उसके बाद एलर्जी भी उनको थी लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम दिया। तो सामान नाजरीन हमारा काम है, हमें जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ शेयर करते हैं, हम कोई पुलिस मैन नहीं, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, कोई देना चाहता है उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, लेकिन हमारा किसी से मुतफिक करना ज़रूरी नहीं है।
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
5: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: और रेक्यून्स के बजट बनाएगी, तो फिर ही क्या कहते हैं हमें हमें पता चलेगा कि कितने पैसे हैं डब्बे में और कितने पैसे नहीं है, और कितना क्या कहते हैं कमूनों के अंदर चेंजेस आते हैं,
1: असल बात तो
0: क्योंकि
1: अदनान जो है वो डब्बे में कितने पैसे वाली बात है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो 2022 से शामस डैनी निल्सन जो है वो वजीर थे, लेकिन अब जो सीना मुंक जो बने, लेकिन ऑन द होल वजारत अब भी जो है वो शामस के ही पास है। लेकिन अब कोपेनहेगन पूरा इधर बंद हुआ, वेस्टरबो इस तरफ जो है लोगों ने अब जो मेला लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के पास जगह नहीं है कि गाड़ी वो कहाँ पार करें, परेशानी में घूम रहे हैं। इस परेशानी का किसी को अंदाज़ा है?
0: दादा साहब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कोपेनहेगन का क्वेश्चंस है ना, मैंने ना एक मैंने बड़े अरसे से मैं खुद फंसा हूँ एक दिन तो मैं खुद फंसा हूँ एक दिन तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ। तो फिर मैंने वो जो हमारा बैठा हुआ है सोशल डेमोक्रेट को, मैंने उसे लिखा, मैंने कहा मैं तो समझता था कि ये आप लोग कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं हम नए बैठे हुए हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा ये तो नहीं ना कि क्या देख लें, मैंने कहा लोगों की मुसीबतें के लिए हम आप लोग इलेक्ट हुए हो, कोई ना कोई तो हाल निकाल लो। तो कहता है ये मसला ये हुआ है कि हमने ये सोचा था कि हमने कम पार्किंग करनी है, तो लोग ज्यादा बसों में और ज्यादा क्या कहते हैं ट्रेनों में घुसेंगे और ये चीजें घुसेंगे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जितनी देर तक वो चीज तो आपकी सही है कि आप गाड़ियां कम करना चाहते हो आप ये, मगर कोई ना कोई तो आप सोल्यूशन निकाल लेना। और ये एक मसला है कोपेनहेगन के अंदर, काफी मसला है, और मैं होप करूंगा कि वहां पे जो जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सिकंदर
1: नहीं,
0: भाई
1: आप
0: हो,
1: ट्रांसपोर्ट के
0: कासार हो,
1: वजीर से भी तो बात करें ना। असल मसला तो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं जो ना, वजारतें ले लेते हैं, इनको पता नहीं होता ट्रांसपोर्ट किस तरह चल रही है।
0: राज साहब प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेशनल है ना वो तो नेशनल का देखते हैं ना, लोकल जो होता है वो कमून के हवाले में होता है, वो कमून ने खुद क्या कहते हैं उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। और जब जितनी देर तक कमून ही सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी उतनी देर तक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, और फिर प्रॉब्लम्स जो होती है ना बड़ी होती हैं। कोपेनहेगन में मसला ये है कि कोपेनहेगन के अंदर एक पार्टी है, आपको भी पता है वो इंग्लिश लिस्ट वाले हैं, उनकी तो यही कोशिश है ना कि सब साइकिलों पे बसों में ट्रेनों में ये घुसे, और वो मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी पिछले इलेक्शन में भी, 2025 में भी, 2021 में भी बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे वो, तो उनको जरा कन्विंस करना थोड़ा क्या कहते हैं होता है। मेरे ख्याल से अब शायद उनकी पॉलिसी थोड़ी बदलेगी, ये हमें लग रहा है कि वो अपनी क्या कहते हैं वो यार अपनी नेशनल पार्टी को देख के उस तरह से थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उनने ये क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे हैंडल किया ये नेगोशिएशन और चीजें लाए हैं, तो उस तरह से उनको करना पड़ेगा। कोपेनहेगन में तो ये भी तो सोच रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड को पार्टी बनाई जाए, तो क्या कहते हैं कुछ कुछ सोल्यूशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोपेनहेगन की इतना देखा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने वेस्टाइन को ही देखा है, क्योंकि वेस्टाइन के ऊपर मेरा क्वेश्चन हुआ था जब मैं ये कुछ दफा ब्रॉनबी में मैंने देखा मैचों पे, और ग्लोव तो कुछ देखा, और मैंने पेबमिसलोन में देखा, तो मैंने जब वहां पे आवाज उठाई तो मुझे पता चला कि कोई कोई प्लान इन्हें बनाए हुए हैं जो बाहर निकालेंगे कोपेनहेगन का। मैंने इसलिए मैं माज अच्छा तो मैंने उनका कोई प्लान नहीं देखा, मैंने आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने एक लिखा था कि आपने बंदे को, उसने मुझे यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और हम जब हम पता चलेगा कि मॉडल सेशन कैसे
1: ज़रा यहाँ
0: है।
1: सिस्टम से काम होता था। अदनान आपने आगे जिक्र किया कि स्मैरा जो है वो रेडिकल मिनिस्टर की ओलो ले लिया, उन्होंने जो है अपनी पार्लियामेंट की सीट जो है फिलहाल उन्होंने छोड़ी हुई है, वजारत रखी हुई है, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा है?
0: उनकी जगह बैठेगा फर्स्ट सुप्लेंट जो उसका उसकी पार्टी का वो बैठेगा, वो इतनी देर तक उसने ये इसलिए, और राजा साहब ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उनको ये होगा कि उनकी जो ग्रुपिंग है ना ग्रुप जो उनके मेंबर्स हैं वो फिर जरा पार्लियामेंट के अंदर उन पर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। 10 सीटें थी मेरे ख्याल से उनके पास, अब वो आए थे अंदर नंबर 10 सीटें थी, तो इस तरह से उन पर क्या कहते हैं फिर उनके जो तो काम का लोड होगा ना दूसरों पर इतना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उनका आइडिया अच्छा है, और एक मोटी क्या कहते हैं एग्जाम्पल होती है कि बंदा बंदे को लालच नहीं होता। आप देखिए ना कि कल मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स को, जो जो यहाँ का फर्क है, हमारा जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था मैथियस सिपाही, जब वो अपना ओहदा दे के छोड़ के

0: है उधर बादशाह के पास, तो वो पैदल चल के गया अपने ऑफिस वापस। और पैदल चल के जब गया ऑफिस, तो लोगों ने उससे सवाल पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रहे हो। तो उसने एक जर्नलिस्ट को कहा, उसने कहा मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा सुबह, आपको बान की बात होगी कि वो सुबह ट्रेन से गया था अपने पार्लियामेंट में, वो ट्रेन में बैठ के गया
1: इसलिए कि उसको
0: गाड़ी
1: गाड़ी
0: के
1: पे
0: अंदर,
1: जाए तो उसको पार्किंग नहीं मिलती।
0: नहीं पार्किंग की वजह से नहीं गया वो, पार्किंग तो उसको मिल जानी है क्योंकि वो तो उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर। वो कहता है मैं क्यों जाऊं, कहता है मुझे शौक है आम बंदे रहने का, और उसने वजारत भी इसलिए छोड़ी है कि वो अपना क्या कहते हैं वो लोकल काम करना चाहता है। वो कहता है जब मैं एक मिनिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिनिस्ट्री का काम करूंगा, जब मैं कोपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम करूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा और
1: तो
0: ज्यादा
1: चलें
0: मिसालों को
1: अदनान
0: क्या
1: आते हैं,
0: कहूंगा।
1: शाह साहब भी सुन रहे आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समेरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
0: यार सब देखे नहीं, पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना तो एब्लसोन का जो एब्लसोन से बंदा निकल गया है, रहता मचियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम तो होती है एक एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो हडिखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे एब्सलोन से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्सलोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्सलोन से, क्यों नहीं आ
1: नहीं
0: सके।
1: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम सामा बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल बनता है सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी। असूली तौर पर डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की जो सीरत सेकेंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाने। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहाँ हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं, और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है। अदनान, इसमें अगर आप वजाहत कर दें, साथ जी साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशन से करते हैं।
0: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की है, शाह साहब ने बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो दो ऑर्डर देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना केलन, वो दो हिस्से में होती थी रेक्यून, अब वो एक रेक्यून में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। कहा तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं 4 साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मेरी अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुर्बा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में इतनी जॉब होती है ना, वो इसने 3-4 मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको अब बात कर देता हूँ, ओपन हमारी बात हो रही थी कुमाऊँली पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें भी पता है मुझे पता है कि 2 या 3 साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये माचन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको लिया, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है, की मीटिंग जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है, और आपका उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूओ में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती हैं। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
2: शाह साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
1: ये अदनान, आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इंफॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपने रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंके फलके उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने कहा, और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं हम कि वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाईएस्ट कार्ड का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाईएस्ट कार्ड ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सब सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राब्ते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राब्ते किए, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राब्ते करूंगा, और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा, कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है, कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो अब तुम आज काउंसलर के अंदर बड़े होते हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे चंटे रहो, हमने ये आपकी आवाज से सुना वो सुना है। मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिए कि लोगों की इतनी इज्जत हो गई है आप लोगों की वजह से। और ये तो आप लोगों का कहते हैं, आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं, मुझे गाय पूछते हैं, मुझे कहते हैं। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस, मैंने कहा था कि मैं तो, मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे।
2: नहीं, मेहरबानी आपकी, आप टाइम निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देखिए राजा साहब, ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी और मैं इसका शुक्रिया अदा आपका कभी बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही, हाँ, यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी बांजा है, मेरी बेटी है, वो जहां जाते हैं वहां वो यंगस्टर पूछते हैं, तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है, आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलने, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन। हाँ, मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है, और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है। इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, कुछ देख
1: यही
0: पा रहा
1: यही यही अदनान, यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे पोलिस सेल्स के बल निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे, जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूँ कि आप अवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ्फुज़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये रास्ता है राजा साहब। देखिए, वो जो जो दो दो दो अलहदा चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इस एरिया चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना, वो ये था कि जब आप कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये, अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे, आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मकान उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, चाह साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे 10 कॉल के पीछे के लिंक आने लग जाते हैं और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटरकेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लेगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो
2: चले, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ।
1: अदनान, बहुत बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून का जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जी शान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
0: शुक्रिया आप दोनों का। हम लोगों को फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको।
2: अल्लाह
1: हाफिज।
2: बहुत शुक्रिया शाह साहब। आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाज़त लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा।
1: जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
2: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो हैं वो सवाल जवाबात की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समझना, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है। कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।